0: रिसेप्ट ठुक मार भी
1: ये शे दान याँ शे रहे दा
2: रे रे रे रे ना दा लू ली छी जिर दान की गे लोग जवा इंस ना छो रे आचान चा ननी पारग जवा दी न्योग चा साज युगी रे
0: कंजेस न्योग चा भी योशे शाल का भी योश भी
2: 让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让给我们去。让
0: Yame na, rangye suso kukub deje, mo rangle rangye chimba hiba rachwe chik yoshiba. Dusi ishi chidu, rangye le mo rangle kaba yoshi.
2: Nye jazun shiwme. Gubri nye samba, lu li chinga rangle, nga juyong chie to sabi. Mo rang shiga jamba yubay ma tse, semza kwayo bada, jeba choga, samshi chidu gui. Muranyam do dedu, tsorna di, ngone, gibushirado. Yine rangge, nangmi tsada shugi. Nangmi dantaze, kimsang di nale chujimido. Rangge shemshila, nga gibu chogashirada, nye kodayla gyurwa kandir shumbi ne, nye sande nga chigyongda simkuru didu chini sabgi. Rangge sosu kyoge sidung gana. 你最好不好过不及呢，等到什么策略的这里下，俺的我呢，让给彭某群酒店子能行些，俺家里叫，等到俺打听，他能俺许多钱的生意，顶着钱的马达嘞，让给年轻都让做什么都出个的，年长了，结果吃错嘛是呗，让给俺苦过的这些债务多，让给客队一年宽面错了没钱，多能行的下，俺拿萝卜大哥，什么拿了红桃钱，装什么多。 이내 룰이 신게 나 제부 초게 나와 시대기라 뭐라 그 땡스 임베 초나 시대기